0: मेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है, यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। दो साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच दो वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। Fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ही मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के

0: Similar weather conditions will continue over northeast India during the next 2 days. IMD said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, West Bengal, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahi and Telangana till tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of very light rain accompanied by strong surface winds for the day. Prime Minister Narendra Modi today extended his best wishes to the Indian contingent who are participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi expressed confidence that Indian athletes will compete with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the World Juniors and a firm favourite to win the title. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
1: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश की शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अटल संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरफ समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबसे अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
4: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल

0: चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @eairnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India EU Free Trade Agreement is an important milestone in India EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में

0: ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
1: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथराज और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सखियों, खुशियां ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर जरूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर जरा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियां हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी जरा नजर घुमाइए बच्चों की तोतली बोली में, कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मनपसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्नी नन्नी सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतजार किस बात का है, इन नन्नी खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्नी खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियां हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली से मैं बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं क्या करती हैं।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा लिख लेती हूँ।
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी की मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा है तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
1: हाँ होते हैं ना चंचल जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
1: लेखन की प्रेरणा मिली कुछ बातें कुछ गीत से।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप भी हिचक बता दीजिएगा।
0: ये बड़ी अच्छी बात
1: खुलती गई थी।
0: सृष्टि, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
1: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
0: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कोई शौक आपके?
1: बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं, मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहते।
0: ये बिल्कुल सही बात है।
1: अगर पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक
0: है। अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी जी जी जी।
0: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो
1: लिख नहीं सकते आप।
0: बिल्कुल सही बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
1: जी जी जी।
0: सृष्टि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं।
1: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
0: जी आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे।
1: दीदी, जिला सागर मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ। दीदी
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी, कक्षा 8वीं में।
0: कक्षा 8 में? यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है। दीदी दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है। तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन,
0: जी
1: 5वीं तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी।
1: जी दीदी
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वो यहाँ उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में।
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है। जी
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: दीदी
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी

0: ढूंढू मैं कहाँ, हो माँ के बिना फूना है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ।
1: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियां बांटता है।
0: जी दीदी,
1: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज
0: जी
1: आप
0: दीदी,
1: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
0: मूवी का नाम है रंग
1: जी,
0: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
1: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
0: जी
1: इसमें क्या मेरी खता है।
0: जी
1: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: तुम्हें

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है ना,
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा

0: किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
1: अच्छा,
0: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
1: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
0: जी मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, कि दिल का मुसाफिर चली जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
1: बहुत
0: इतनी
1: बहुत
0: प्यार
1: सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव,
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई, मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था।

0: बचपन से ही सुना है रेडियो।
1: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती, क्या करती थी साजना।
1: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे।
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के
1: सुनना
0: लिए आप क्या
1: आपका,
0: करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।

0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करती हूँ मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात कर रही हैं, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युतिका नागर।
0: युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही।
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना,
0: हाँ
1: जूही
0: जी,
1: का
0: जूही का फूल
1: वो।
0: बहुत सुंदर होता है।
1: वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में एमए बीएड करे हुए लोग थे,
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण लिखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा। और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते, क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे, जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, जैसे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ की मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ भी काम करते हैं।
0: काम कर

0: हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है। वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ये मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनू, म्यूजिक गाऊ, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूं कहिए किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा, रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेते हो, कहीं सीखा है? मैं कहती हूँ उनको कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
0: अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है वो
0: बताइए, आपकी पसंद कौन से गीत की है वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: मेहर फिल्म का गाना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका किस
1: हाँ,
0: तरह

0: गुजरता है।
1: घर के काम करके थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते
0: काम
1: हैं।
0: हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम खाना बनाना।
0: खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है?
1: हाँ जी मैम।
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम। मन
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का मैम।
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का, आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। मैम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियां ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियां मिल जाती हैं, तो आपको
1: जी
0: अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। जी
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के। सूजी
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भूनकर।
0: सूजी के टुकड़े
1: जी
0: बनाती हैं।
1: जी जी मैम। और मैम आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयां भी बना लेती हैं।
1: जी आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयां होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो
1: जी मैम,
0: मावे की मिठाइयां मिलती
1: जी
0: हैं
1: मैम,
0: उनमें कोई भी
1: जी मैम,
0: मिलावट होने की संभावना बनी रहती है। तो
1: जी मैम,
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा
1: जी
0: करवाती
1: मैम,
0: हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है।
0: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो

0: आप जो आज गीत सुनना चाहती हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा। बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले याद आया करो।
0: सानिया जी आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की
1: और
0: किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं। आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती हूँ। वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती है।
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको प्रेरित करती हैं।
1: मैडम
0: और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली,
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा? और उसके बाद में और कौन से कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ मैं और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले, उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन
1: इसीलिए
0: है?
1: हम दोनों ही है।
0: आप और आपके पति देव।
1: हम दोनों
0: तो आज आप,
1: ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज रूली, शेंगदाना, मूंगफली, वो बेचते। मैं
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर
1: जिंदगी
0: तो पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी बात हो रही है चंचल वर्मा से। तो दो चंचल सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी।
0: चंचल जी, अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी,
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप। रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी।
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम, मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है, जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ही जज्बा होना चाहिए, कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं, किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का ये।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है, वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए। क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें। इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 02।

0: टू। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: ಪ್ರೇಮ ಪಲ್ಲವಿ ಚಿತ್ರದ ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಿರಿಕಂಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಯ 8:45 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ, ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त. पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी. गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित.

0: में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यान पूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ बातचीत के शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1200

0: 64 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिए बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
2: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है।
1: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत के संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill.